0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओ, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओ, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं, या

0: साइलेंट कर देते हैं, आप पूछेंगे फिर क्या करें, तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है। यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए पांच आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी

0: रॉयल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
1: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
0: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
1: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
1: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
4: जी जी चलो चलो देखते हैं।
1: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
5: अहोम के महाराज की जय हो।
6: जय हो, जय हो।
5: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
7: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Jackpot. अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा। लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया।

0: और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
1: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
1: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
1: ओह,
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
1: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
1: ओह,
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
1: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे, चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है।
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट।

0: ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक है, आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। हाँ। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मम्मा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर हैं।
1: अरे सुन तो।
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहे।

0: 얘기. तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: मेरे इंतवरकु एनसीआरटी वारी प्रायोजित कार्यक्रम विन्नारु।

0: మీరు ఇంతవరకు చిత్రసీమ తెలుగు సినీగీతల కార్యక్రమం విన్నారు. తిరిగి సాయంత్రం 5 గంటలకు చిత్రసీమ కార్యక్రమం వింటారు. ఆకాశవాణి వరంగల్ కేంద్రం, సమయం 9:45. న్యాయశాఖ వారిచే ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు.
1: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder, Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shaharon mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओस, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो. एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय यह है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएँ जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं. कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है. उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं. जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाज़ों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं. अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज़ करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए. तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज़ तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो अब वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज़ के, तो उसके कुछ कारण हैं. आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया. तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़

0: काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं। और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज़ के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज़ है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है। और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: You have been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस।
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना, समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खाना

0: बन की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना। सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना। ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज़ क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है। आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामयी वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए। और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं। और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे। और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age friendly India and age friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश

0: के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन

जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।